पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगों कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगों का तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी, ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुनांदे सन, लोगों नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहन लगे मर्दानिया चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह।

जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पौनी भुल गई ना उतार रहा ना उराग रहा।

बंदे नूं अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आउंदा, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना जरा प्यार ना सुनना, कहंदे ने

जदों तुहानू सर्दी लगती है ते कपड़े वास्ते ग्रिस्तियां दे घर जांदे हो, जदों भुख लगती है रोटी वास्ते ग्रिस्तियां दे घर जांदे हो, ते जिन्हां नू माड़ा कहंदे हो उन्हां तों बिना तुहाडी गति भी कोई नहीं।

फुल धरते तो हो सकता सी दुध डुल जाता। गरीब नवाज पातशाह ने उन्होंने इशारे नाल समझा दिता भाई हे फकीरो हे पीरो जिवें ए दुध उपर चंबेली दे फुल दा कोई असर नहीं होया दुध उदा ही है। मैं तुहाडे विच आके ते ए तुहानू महसूस नहीं होण देंगा भाई मैं इत्थे कोई रहण आया या पीर बनण आया नहीं मैं ते तुहानू मिलण आया।

साहिबजादे सूबे दे सिपाहियां नाल ठंडे बुर्ज विच माता जी पास परत आए। माता गुजरी जी पोतियां कोलों इस तरह हाल पुछदे हैं।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी। मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा। औगणे आरा मनुख पशु है। गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है। औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा, अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा। अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने, दी हस्ती नूं कटदे ने, ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे ने। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे ने। अवगुण कटे जांदे ने, गुण निसरदे। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा है, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस। औगण मर जांदे, नकारा मनुख मर जांदा। एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लैके मनुख उपर नूं उठदा, गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है, तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में, कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चित वधे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शिया। साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया, तिस गुर को हों सदा घुमाया, मैं वारने जावां उस सतगुरु तों, तिस गुर को हों खन्नीए, मैं टोटे टोटे हो जावां बलिहारने जावां उस तों। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हों वारने, जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है, उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते। जिन अवगुण कट गुणी समझाया, सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु सांडे। साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शिया है, अपना प्यार बख्शिया है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया, ते मैल नाल पारा भी हो।

विश्राम की भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चलते बनने। पर भोजन तो कर लो ना। आ वेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करते ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए अज नहीं, ए रोज ही ऐदा चलदा है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तो तैनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करदे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करदे हो, कदे अपने वल वेंदा है कदे बाबे वल वेंदा है।

चोर की हम परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जे खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने। पर जे तू चोरी ना करें ते चंगा, ए माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकता। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी, जे तू नहीं मुड़ सकता ते सी क्यों।

हैरान हो गया भी है ये की होया कोई चोर आया सब कुछ इकट्ठा करके उस तरह पंड बन के छड़ गया गल की सवेरे इलाके दे सारे बदमाश कट्ठे कर ले ते लगी मार पैन उन्हें सोचदा है एदा नाम इतिहास ने भूमिया करके लिखे भूमिया सरदार जमीन भी बड़ी सी बाबे दा वचन चेते आ गया पे गरीब मार नहीं करनी ते सोचदा गरीब मार ते हो रही है भूमिया करे तू ते परे कोई होर जाके पेश हो गया पे राजन ए सारे नु छड़ दे मैं तेरा चोर भूमिया सरदार तू एक भी हो सकता है नहीं राजन मैं ही तेरा चोर हाँ कदे चोर भी को कहंदा मैं चोर हाँ ये गल की है सारा कुछ सुनाया भाई मैनू मेरा मालिक मिले है आप नारायण कला तार जग में परवरियो संसार नू छेद देन वाला गरीबां ते रहमत दी छां करन वाला आप चल के आया मेरे घर ते मैनू सिखिया दे के गया सच बोली लून खा के आराम ना करी राजा मैं तेरा लून खा लिया सी ते गरीब मार ना करी बड़ा समझदार सी कहन लगा मैं इनू सजा की देनी है सजा देन वाला तेनू सजा दे गया भूमिया सरदार मैनू भी मिला उन्हू मैं भी ओदे दर्शन करके अपना जन्म सवार लवा वो किथे मिलनगे भूमिया कहन लगा उन्हू याद कर प्यार नाल वो आपे आवेगा जिवें मेरा बेड़ा तारिया जिवें मेरे गरीब ते नजरे अनायत कीती है तेरे ते भी करेगा फिर मैं की करा तू प्यार नाल जप ते प्यार

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रु कहने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ ले। ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कर दे, ताके तेरे हृदय च टिक जावे सतनाम श्री वाहेगुरु।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहिंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप दे के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्धी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी की, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल किया, कोई गलत काम ही नहीं किया, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार हो के

भगत अमरीक बारे। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच, अमरीक मोह वर्त है, रात पई दुर्बासा आया। ए राजा अमरीक जिन्हां दे पिता दा नाम नाम भाग सी, राजा अमरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अमरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहे है पर नाल भगती भी। ए दी भगती तों दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक दी रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुक्म सी तू अमरीक दी रक्षा करनी। इस गल दी गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आ के वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे आ रस्ते दे विच दुर्बाशा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्बाशा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्बाशा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे हैं? राजा अमरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्बाशा रिखी कहन लगे ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीक कहन लगा सतबच ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारे ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया तो वह श्राप देन वास्ते तैयार हो गया, अखा गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होण कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नूं, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नूं कहा ए जड़ा राजा अम्बरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर।

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नू मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा रेखी एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म दा काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करदे ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड्डी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड्डी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नू प्यारी है। ता की होया, ब्राह्मण पढ़ना जियो लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्भाषा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पढ़ना जियो लै, रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नू तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनू फिर कौन बचावे। ए दुर्भाषा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नू, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं, ता दुर्भाषा ऋषि शिव लोक नू चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्भाषा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नू गया, ता ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्भाषा ऋषि बैकुंठ नू चला गया विष्णु भगवान दे कोल, ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मवी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्भाषा ऋषि के सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन, सिख दे सबना समझाया, देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने, सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्भाषा तू भगत नू बुरा किया, तू भगत नू दुख देना चाहे, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं ता तेरा बचना बड़ा औखा है।

ओ परमेश्वर किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। नाउ निधि ठाकुर देवी सुदामे त्रू अटल अज हूं ना टरियो अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी। त्रू भगत ते कृपा की थी भगत हेत मारियो हरनाकश भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते नहीं केसव परमेश्वर नू के सोने केसा वाला परमेश्वर ये वो जरा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते तो अज तक वो बल राज के द्वारे से खलोता होया है। तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी।

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

देत हो कहूं देवतान के दीवान में विराजमान कहूं दानवान को गुमान मत देत हो कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही।

एतन होती खाक में मारी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गौर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए, झूठी

फ्रीदा कंठल में का जिंदन काई मेक वारी आपो अपनी चले मुसाइक सेख सेखा जाती जगना कोई रहा सेखा जाती जगना कोई रहा।

करना कबीरा तूर सकेल के पुड़िया बांधी दे दिल से चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए।

चलने चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार विचार ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नो जिमें पुछे आसमान

बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लख रहा जात मह जोत जोत में जा ताक लकला पर पूरया तो सच्चा साहब से सवाल लो जिनकी तीसो पार पया

सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृतय सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन दयो महला दूजा।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लहणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साढ़े पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला दिते, आख्या साढ़े पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करान। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए सोने चांदियां दे ढेर लाए हीरे जवरातां दे ढेर लाए आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ाह प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री, हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया अपने हिरदे नाल ला के
पाई लैने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं और की कहिंदे हैं।